0: की सिख सुनी।
1: गुरा एक दे बुझाई समा जिया का एक दाता तुम विसर न जाई।
0: जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए
1: नवा खंडा विच जानिए नाल तिल साहब कोए।
0: चंगा नाव रखाए कै जस की रचगले।

0: मन बोध
1: मन सगृप सुत खाए मन जम के साथ न जाए।
0: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।
1: मन मार्ग ठाक न पाए मन पातशो प्रगट जाए।
0: मन मागदा चले पंथ मन
1: धर्म
0: से तीसन बांध।
1: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन पावे
0: मुख द्वार मन परवार ऐसा दार।
1: मन तर तारे गुरु सिख मन नानक पवे न भिख।
0: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।
1: पांच प्रवान पांच प्रधान पंचे पावन दुर्गे मान।
0: पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक त्यान।
1: जे को कह करे विचार करते कह करने नाही शुमार।
0: तौल तरम दे आका पूछन तो था प्रख्या जिनसु।
1: जे को बुझा होवे सचियार तो भलाय ऊपर किता पार।
0: तख्ती होर परे होर तिस्ते पार तले कमजोर।
1: जी जात रंगा के नाम सब ना लिखया बुड़ी कलाम।
0: एव लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए।
1: केता तान सवाल रूप केती दास जाना कौन कूत।
0: किताब साओ एको कवाओ तिस्ते होए लाख दरिया।

0: पानी तो
1: भूत पलीती कपड़ होए देसा बुलाई है ओ तो है
0: परिया मात पापा का संग ओ तो पर नवा करंग
1: नी पापी आखरना है कर कर करना लिख ले जाओ
0: आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुकमी आवो जाओ
1: तीर्थ पदया दाता जे को पावे तिल का माल
0: सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल ना हो
1: सब गुण तेरे में नाही कोए वण गुण कीते पकत ना होए
0: स्वासाथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मान चाहो
1: कवण सवेला वक्त कवण कवण थित कवण वार
0: कवण से रुती मां कवण जेत हो आया कार
1: वेल ना पाया पंडित जी।

0: को खाए आखण पाए जाण जतिया मोह खाए
1: आपे जाना है आपे दे आखा से पे कई के
0: किसनु बख्शे शिव साला नानक पातशाही पातशाह
1: अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारी अमूल भंडार
0: अमूल आवै अमूल ले जाए अमूल पाए अमूल समाए
1: अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान
0: अमूलो अमूला ख्या अमूल बख्शीश।

0: पावे सोई करसी हुक्म न करना जाए।
1: सो पाशाह शाह पासाए नान ग्रहण रजाई।
0: मुंदा संतोख सनम पाचोली त्याग की करे विभूत।
1: किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत।
0: आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत।
1: आदेश तिसया देश आद नीर अनाद अनाहत जो जुग एको वेश।
0: उसकी आंधे आपन डारन गटगट वाजे नाथ।
1: आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध।
0: संजोग जग दो एकाद चलावे लिखे आवे पाग।
1: आदेश तिसै आदेश आद अनीर अनाद अनाहत जो जो एको वेश।
0: एका माई जुगत व्याई तिन

0: भुजं परयाचंद चतुर्चक्र करता चतुर्चक्र जाने चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले चतुर्चक्र माने चतुर्चक्र दाने न कर्म न काय जन्म जाय
1: चित्र न मित्र परे है पवित्र
0: प्रति स दिस दृश गुर स भगवती कथते क्या गंज कर्म है क्या भंज परम है
2: क्या बिजलोख है क्या दुख सुख है
0: क्या भूत भरना है क्या भूत करना
2: है राज प्रभा है कि तर मुक्त जा है
0: क्या शोक भरना है क्या सर्वा भरना है
2: कि जगत कृति है कि क्षत्रं क्षत्रिय है
0: कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनुपम रूप है
2: कि आद देव है कि आप पेव है
0: कि चित्रं बहिना के कह देना
2: है कि रोजी रोजा के रही मैं रहा
0: कि पाक में है वह को क्या बोल गए वह
2: कि फूल गना है कि शाह है
0: कि कारण पुनिंद है कि रोजी ध्यान है
2: के राज करीम है के कर्म करीम है
0: के सर्वं कली है के सर्वं दली है
2: के सर्वत्र माने है के सर्वत्र दाने है
0: के सर्वत्र गौना है के सर्वत्र भौना है
2: के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा
0: के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा
2: के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना
0: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
2: के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा
0: के सर्वत्र काला है के सर्वत्र पाला है
2: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
0: के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी
2: के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा
0: के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा
2: के सर्वत्र त्राणा के सर्वत्र प्राणा
0: के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा
2: के सर्वत्र माणिया सदा मुख प्रदाना
0: के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या
2: के सर्वत्र पाणा के सर्वत्र माणा
0: के सर्वत्र इंद्रा के सर्वत्र चंद्रा
2: के सर्वं क्रीम के परम फीम
0: के अकल अलाम के साहेब कलाम
2: ਖੁਸ਼ ਨਾਲ ਵਜੂਆ ਤੇ ਮਾਮਲ ਵਜੂਆ
0: ਹਮੇਸ਼ਰ ਸਲਾਮਾ ਸਲੀਖ ਤੋਂ ਮਦਾਮਾ
2: ਗਨੀ ਮੁਸਕਸ਼ਤਾ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਸਤਾ
0: ਬਿਰੰਦਲ ਮਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਲ ਜ਼ਮਾਨਾ
2: ਤਮੀ ਜੁਲ ਤਮਾਮ ਹੈ ਰਜੂਲ ਨਦਾਨਾ
0: ਹਰੀਫ ਉਲ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਕ ਯਕੀਨ ਹੈ
2: ਨੇਕੁਲ ਤਰੰਖ ਹੈ ਬੇਦ ਹੈ ਪੰਖ ਹੈ
0: ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਗਨੀ ਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ
2: ਜ਼ਰੂਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਨਵਕਤ ਵਪੂਤ ਹੈ
0: ਪ੍ਰਭੂਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਜੋਕਤ ਸੁਦਾ ਹੈ
2: ਸੁਦਾ ਮੁਖ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪੇਦੀ ਅਨੁਪ ਹੈ
0: ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਵ ਸਾਜ ਹੈ
2: ਸਮਸਤ ਉਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦਾ ਵਲਕਾਮ ਹੈ
0: ਨਿਰਵਾਸ ਰੂਪ ਹੈ ਗਾਦਨ ਰੂਪ ਹੈ
2: ਅੰਗ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ
0: ਅਨੰਗੀ ਨਾਮੇ ਦਰਭੰਗੀ ਦਰਕਾਮੇ
2: ਵਰਗਨ ਤਰਵਾਦੇ ਗੰਜੇ ਗਾਦੇ
0: ਸੁਭੰਗ ਸਰ ਭਾਗੇ ਸੁ ਸਰਬਾਨ ਰਾਗੇ
2: ਤ੍ਰਿਪਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੇ ਛੈ ਸ਼ੂਤ ਹੈ
0: ਕਿ ਨਰਕੁ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ
2: ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਸੁਦਾ ਮੁਖ ਸੁਦਾ ਹੈ
0: ਵਿਭੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਜੋਤ ਅਨੂਪ ਹੈ
2: ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਦਾ ਵਿਭੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ
0: ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਜੋਤ ਅਨੂਪ ਹੈ

0: ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवीं ताक पर सात सुबह ये सुलाह सुध समूह नाम के देव हो कर जोगी थी के
1: सूर सुराजम सुध सुधाधक संत समूह और एक मति के
0: सारे देश को देख रहे हो मतपुर में देखे पाणपति के
1: श्री भगवान की घन कृपाऊं ते एक रति बिन एक रति के
0: माते में तांजे जर संग नू पुतांग सुरंग सवारे
1: और तुरंग कुरंग से कूदत पौन के कौन को जात नवारे
0: पाटे पुचान के पूपली विन्यावत शीशा जात बिचारे
1: इते भय तो कहां भय भूत अंत को नांगे ही पाए पधारे
0: जीत फे सब देश ते सांग को बाज ढोल मृदंग नगारे
1: गोंचत गूढ़ के जान के सुंदर हंसत है राज हजारे
0: भूत पे भगवान के पूपत कौन ग्रह नहीं जात बिचारे
1: श्रीपद श्री भगवान भजे बिने अंत को अंत के धाम सदा है
0: तीर्थ नान दया दम दान संजम नेम अनेक बसेख है
1: वेद पुराण कदेव कुरान जमीन जमान समान की पेख है
0: कौन हार जती जता सब हजार हजार के देख है
1: श्री भगवान भजे बिन भूत एक रति बिन एक न लेख है
0: सो सिपा दुरंत बास सात सुना दुर जान लेंगे
1: भारी कुमार भरे मन में कर पर्वत पंख हले न लेंगे
0: तोर अरीन मरोड़ निवासन माते मतांग मान में लेंगे
1: श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
0: जपेंगे
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पर में सब थान तपेंगे
0: उन प्रतापन
1: लटकायो
0: को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो।

0: रात में संभाले
1: आप छठ सदा रहे प्रणाम गुरु ने अगर ना जाना कोई
0: कह नानक सिरो संतोषो से सन्मुख होए
1: देखो गुर ते विमुख होए बिन सतगुरु मुक्त ना पावे
0: पावे मुक्त न होते कोई पूछे बेकी आ जाए
1: अनेक जूनी भर में आवे बिन सतगुरु मुक्त ना पाए
0: फिर मुकत पाए लाग चनी सतगुरु सबर सुनाए
1: कह नानक विचार देखो बिने सतगुरु मुक्त न पाए
0: आओ सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी
1: बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी
0: जिनको नदर करम होए हे

0: जादू जग में आया,
1: जिन हर तिरा रचन रचया सो हर मानना वसाया,
0: गुरु प्रसादी हर मनुष्य पूर्व लिखिया पाया,
1: कह नानक शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुरु से चित लाया,
0: ए नेत्र मेरे हर तुम्हें जो
1: तरी
0: हर बिन अवर न देखो कोई,
1: हर बिन अवर न देखो कोई नजरी हर निहालिया,
0: एहो वे संसार तुम देखते हर को रूप है रूप नजरी आया,
1: गुर प्रसादी बुझिया जावे खार एक है हर बिन अवर न कोई,
0: ए नानक ए नेत्र अन से सतगुर मिलिया दृप्त होई,
1: ए श्रवणो मेरे हो साचा सुना नो पठाए,
0: साचा सुनने नो पठाए श्री लय सुनो सतवाणी,
1: जित सुनी मंत्र हरिया हुआ रसना रास समाणी,
0: सच लख डानी ताकि गत कही न जाए,
1: कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचा सुना नो पठाए,
0: हरजियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन उजाया,
1: उजाया वाजा पौन नौ द्वारे पर किए दसवां गोत्र खाया,
0: गुरुद्वारे लाए पावड़ी एक न दसवा द्वार दिखाया,
1: है नेक रूप नाव नागरे तिस्ता अंत न जाई पाया,
0: है नानक हट प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन उजाया,
1: ते साचा सुना साचा घर गावो,
0: गावो तो सुला कर साचे जिथे सदा सच ते हवे,
1: सचो त्यावै जा तुद पावै गुरमुख जना बुझावे,
0: सत सबना का कसम है जिस बक्से सो जन पावे,
1: कह नानक सच सोला।

प्रबंधक की इतना प्यारे से ख्याल जी के बारे ध्यान से के बोलो जी जिना सिंगा सिंगिया ने तन है तुसी सते बंद बंद कताए ऊपर या लहाया के क्रिया ते चले आ रहे ने चलाए के गुरुवारे आदि से वाले कुर्बानियां की थी तामने हार ऐसे की के सो फसल आने में राधे कुमारी ध्यान से के बोलो जी पंजा तक सब बात को दुआ दे देते आंधे के बोलो जी इतने सब बात

है बुझै सो आप पछाणै, हर प्रभ है तिस केरा। सतगुरु सदा दयाल है पाई, बिन पागा क्या पाईऐ। एक न दर कर वेखै सब उपर, जेहा पाओ तेहा फल पाईऐ। नानक नाम वसै मन अंतर, विचो आप गवाईऐ। सतगुर सदा दयाल है पाई, बिन पागा क्या पाईऐ। एक न दर कर वेखै सब उपर, जेहा पाओ तेहा फल पाई।

नाय लये नाक न जाये जियो पिन साते सदे काजे आख गवाये जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नीच सदाये जे जिरवाना पर

सचो सच त्याया, उनी मंदा पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया, उनी दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी तोरा खाया, तू बख्शीशी।

पकड़े ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म बनया होवे प्रवान ता कसमै का महल पाए सी कसमै पावे सो करे मनु चंदिया सो फल पाए सी।

ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी के पाछा दसवें प्रथम गौती सिमर कै गुरु नानक ले ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस तिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनो ने दया बैतार सब थाए हुए जी सहाय। दसवें पाछा तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाए हुए जी सहाय। दसवें पाछा जी जो तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाते दाल जत्यां तक खालसा जी सब बोलो जी। पंजा प्यारे चौ सब जा दिया चालिया मुक्तियां हटिया।

ने सूरत करा को मेरी दर्शन दी जाए को व्यवहार रहा तुम तन तुनी उदार ते आगी श्रवण न सुनिया तो सुजास कुमार मांगो काहे रंग सब देखो तुम ही दे मेरो ने सितार जय देव नामा बिप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार कह कबीर तुम सम्राट दाते चार पदार्थ देत ना बार जय देव नामा बिप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार कह कबीर तुम सम्राट

जन्म मरण दुख जाए हो वैसे पृथक समझी नूर अरसों को सुन चुकी है तुद डिठे सच्चे पात सा मन जन्म जन्म दिए कटिया सज्जन सच्चा पात सा फिर सहा

पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां जय साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो। वाहिगुरु सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंदप है पाई जे गुर के पाने विच आवे अपने पाने जो चले पाई विछुड़ चोटा खावे बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई फिर पुछो तावे हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे आपे मेल मिलाई रहाओ एहो कुटुंब सब जी के बंधन पाई परम फुला सह सारा बिन गुर बंधन टूटे नाही गुरमुख मोख द्वारा कर्म करे गुर शब्द ना पछाणे

ॐ श्री वाहिगुरु साहिब हल्ला ज्ञान रसम भुलाया दुर्पाय सतगुण कटियो से जे सच्ची बुझ हो जाए मन मेरे बाबले हर सा साथ पाए अन्य सा भला कह तो बुरा बेटा जन

के पुख पर चेत है मैं हृदय ना राम साया रभाय राम रव्या राम हृदय परम गुद पाए जा गुरु शरणाई आए लोक विकार नाव दुखी निकले जा सदगुरु नाम दृढ़ाए जी दान गुरु पूरी दिया राम नाम सतलाए आप कृपाल कृपा कर हर जियो आप कृपाल कृपा कर हे जय नाम गुरु शरणाए बाणी राम नाम सुनि सिदकार सब सुहाय राम रोमे रोम रोम रोमे मैं गुरु मुख नाम ते आए राम राम नाम दे अभूत होए आए तिस रूप नरेख्या काई रामो राम रया पटयंतर सब तिशना भूग आई मंत्र सित संगार होआ गुरमत राम प्रकाशा नानका अपन गुरु किया हम दासन दासन दासा जिनी रामो राम नाम तिसारे से मन मूड़ा भागी राम तिनेंत्रे मोव्या पैकिन की माया लागी राम माया मला की मूड़ भय भागी जिन राम नाम न पाए हाने करम करे माने हर रामो नाम सुराए हर रामो राम सुराए महाविक्रम चंपन दुहेला कलुकुत मो अंधियारा नानक राम गुरमुख आप जाया ता पाए मुख द्वारा रामो राम नाम गुरु गुरु राम गुरमुखे जाने राम एह मनोवा किनू प्याली गए मन एक दरम दर आने राम मन इस करे आने सब करमे जाने हर राम।

राम नाम सुन पीने राम नाम सुमाया जिन्यंत्र राम नाम मन बस तुम चिंता सब गुआया राम सविता सब सब अर्था सरता राम मिले मन चिंदिया फल पाया राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया राम नाम गुण गाय दुर्मत गुप्त गई शुद्ध होई राम नाम मन लाए सब जन्म श्री सब हुआ जित राम नाम प्रगासे नानक हर पर जिस दिन रात

राम जय धरती सब कंचर कर दी जय बिन्नावे अरुण पाया राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया धन चल दया नाल सुहाय राम नाम धन कुंजी जय कुंजी संजी जन डूबे ना डूबे ना।

करे ता साई कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जितनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मन्या हुवे परवान ता खसमे का मैल पाए सी, खसमे भावे सो करे मन्यो चिंदिया सो फल पाए सी। ता दरगे पैंदा जाए सी, श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरना जाई, धोती टिक्का तैच माली तान मलेचा खाई। अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम तुरका भाई, जो लीले पाखंडा नाम लै जाए तरंदा माला।

आगम निर्गम ज्योतिक जाने, बहु ब्यो व्याकरणा, तंत मंत्र सब अवकर जाने, अंत तहु मरना। राज भोग अर्षतर सिंघासन, बसुंदर रमना, पाण कपूर सुभाषक चंदन, अंत तहु मरना। वेद पुराण समर्थ सब को जे कहूँ न उबरना, कहो कबीरियों रामे जम्बो, मेट जन्म मरना आसा। फीलर बाबी बल्द पखावज, कौआ ताल बजावै, पहर चोरना गदहा नाचै, पैसा भगत करावै।

मन छुटे सब किछ हो तू पाए, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाय। संग सखा सब तज गए को ना निभ्यो साथ, कहो नानक बिपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक एह जगत में किन जप्यो गुरमंत। राम नाम उर मैं गह्यो जाके सम नहीं कोए, जे सिमरत संकट मिटै।

कहे नानक सुनो संतो कथियो कथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत परम पुलाया माया तमोनी तिने कीती जिन ठगोली पाइया कुर्बान कीता तिसे विठो जिनमो मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ए कुटंब तुझे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए ऐसा कम मूले ना कीचे जित अंत पछोताइए सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान है जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणे आख्या ता वेख्या सब तू है जिन जग तू पाया कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तुद पाए एक वेख पर सनाया लाभ लो बंकार चूका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिखम मारग चलना लाभ लोभ अंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालो निकी एत मारग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली ज्यों तू चलाहे तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए ते वह चलै जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारा सुख पावे कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे ते वह चलावे एह सोहला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहला सतगुरु सुनाया ए तिन कै मन वसिया जिन तुरों लिखिया आया इक फिरे कनेरे करें गल्ला गलनी किने न पाया कहे नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित से उपवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया कर्मी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा न जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसै जियो मलीन है कित संजम तोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया ए तिस ना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बिता लिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सो पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवे ता सनमुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मै संभाले आप छड़ सदा रह परणे गुर बिन अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जे को गुरते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै पावै मुक्त ना होर थै कोई पुछो भी वे किया जाए अनेक जूनी परम आवै बिन सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नदर करम होवै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख वखाणी हर हर नित करे रसना कहया कछु ना जानी चित जिन काहिर लिया माया बोलन पै रवाणी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा ए होआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव शक्त आप उपाय कै करता आपे हुकम वरताए आप वेखै गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सो लिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप बीचार दे तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो तत्तै सार ना जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहण विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी कहे नानक सो तत् पाए जिस नू अंदिन हर लिव लागे जागत रहण विहानी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है वरदाता जे अगन मैं आहार पहुंचावे ओसनो क्यों पो ना सकी जिसनू अपनी लिव लाए
अपनी लिवापे लाए गुरमुख सदा संभाली है, कहे नानक केवड़दाता सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया, माया गन सब इको जे ही करता खेल रचाया, जा तिस भाणा ता जमया परवार।

कात कत कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदी थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहू नानक विकसै वे परवाहू साचा साहिब साच नाए भाख्या पाउ अपार आकह मंगह देह देह दात करी दातार फेर के अगै रखिया जिद सह दरबार मोह के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक वह जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोई जिन सेविया तन पाया मानु नानक गाविए गुणी निधानु गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सो कर लै जाए गुरमुख नादुं गुरमुख वेदुं गुरमुख रहिया समाई गौरीशर गुर

वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती स्मरका गुरु नानक ले ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ती आइया जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नौन दयावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें

0: भक्त जनाकै मन विश्राम प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै प्रभु कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभु कै सिमरन अन दिन जागै प्रभु कै सिमरन दुख ना संतापै सर्व निदान नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन दुर्गह मानी प्रभु कै सिमरन सुफल फला नानक ताकै लागो पाए प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा अमृत नाम रिदमाए समाए नानक जनका दासन दसना प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे सदा बनासी नानक जन की मंगैर वाला प्रभु को सिमरे तिन सद बलहारी प्रभु को सिमरै तिन सुख बहावै प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे नानक सिमरन पूरा भाग प्रभु कै सिमरन कभू न झूरे प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन कमल बगासन सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार नानक तिन जन शरणी पिया हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन मैं आप निरंकारा नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दर्द दुख भंजना
1: नानक हे प्रभु साथ अष्टवरी जय मात पिता सदमीर न पाई
0: मनुहा नाम तेरा संग सहाई
1: जय महा भयान दूत जमदल है
0: जय केवल नाम संग तेरा चला
1: जय मुश्किल होए अत भारी
0: हर को नाम खिन माए उधारी
1: अनंत पुनः चरण करत नहीं तरह
0: हर को नाम कूट पाप पर हरा
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
0: नानक पावो सुख नेरे
1: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत होए सुखिया
1: लाख करोड़ी बंद न पर
0: हर का नाम जपत निस्तर
1: अनक माया रंग तिख न बुझावे
0: हर का नाम जपत अघावै
1: जे मार गे जात केला
0: तै हर नाम संग होत सुहेला
1: ऐसा नाम सरा ध्याइए
0: नानक गुरमुख परम गत पाइए
1: छूटत नहीं कोट लख बाही
0: नाम जपत तै पार पराही
1: अनक विघन जे आए संघार
0: हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जौन जन्म मर जाऊं
0: नाम जपत पावै विश्राम
1: हो मैला मल कबू न धोवै
0: हर का नाम कूट पाप खूबै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग
0: नानक पाइए साध के संग
1: जे मार के गणे जाहे न कोसा
0: हर का नाम उहां संग तोसा
1: ये पंडे मांद गुबारा
0: हर का नाम संग उजियारा
1: यहां पंच तेरा कोना सियानू
0: हर का नाम तै नाल पछानू
1: जय महा भयान तब गो काम
0: तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम
1: यहां त्रिखावन तुजा करख
0: तै नानक हर हर अमृत बरखा
1: भगत जना की वर्तन नाम
0: संत जना कै मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट
0: हर के नाम उतरे जन कोट
1: अजस कर सन दिन रात
0: हर हर औख साध कुमात
1: हर जन कै हर नाम
0: पाप हम जन की नो दान
1: रंग रते रंग एक
0: नानक जन कै व्रत विवेक
1: नाम जन को जुगत
0: हर कै नाम जन को तृप्त भुगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग
0: हर नाम जपत का पर है ना भंग
1: हर हर का नाम जन की वडियाई
0: हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जोग
0: हर नाम जपत कछ नाहे वियोग
1: जन राता हर नाम की सेवा
0: नानक पूजा हर हर देवा
1: हर हर जन कै माल खजीना
0: हर तन जन को आप प्रभु दीना
1: हर हर जन के ओर सतानी,
0: हर प्रताप जन अवर न जानी,
1: कोत जन हर रस रते,
0: सुन समाध नाम रसमते,
1: आज पहर जन हर हर जपह,
0: हर का भक्त प्रकट नहीं छपे,
1: हर की भगत मगर गो करे,
0: नानक जन संग कीते तरे,
1: पार जाते हर को नाम,
0: काम तीन हर हर गुण गाम,
1: सब ते उत्तम हर की कथा,
0: नाम सुनत दर दुख लथा,
1: नाम की अम्मा संत रिद वसा,
0: संत प्रताप दुर्त सब नसे,
1: संग वड भागी पाईया,
0: संत की सेवा नाम ते आईया,
1: नाम तुल कछ वर न होए,
0: नानक गुरमुख नाम पावे जन को इस लोक,
1: बहुत शास्त्र

0: संघ सहाय तिस पर हरा
1: लेप उतारे तो
0: कर्तव्य प्रीत पसम संघ होए
1: मैं
0: नानक काट लियो प्रभु दयाल
1: पशु की मानस
0: लोक पचारा कर दिन रात
1: बाहर
0: छपस नाहे कच्छ कर छपाया
1: बाहर ज्ञान ते आनिश नाम
0: अंतर व्यापे लोक स्वान
1: बाहर तन स्वाहा
0: बल पात्र कैसे तरे
1: अथाहा व्याके अंतर बसे प्रभा
0: नानक तेजन सहज समात
1: रुंदा कैसे मार्ग पावे
0: कर गए ले हो ओढ़ निभाव है
1: कहाँ विजार से बुझे डोरा
0: निष्के ये तो समझे पूरा
1: कहाँ विषण पर गावे गुंग
0: जतन करे तो पीसुर पंग
1: क्या पिंगल पर्वत पर पवन
0: नहीं हो तू हाँ उस गवन
1: कर्तार कर

0: दस वस्तु ले पछे पावे,
1: एक वस्त कारण बिखोट गवावे,
0: एक पीना दे दस भी हिर ले,
1: तो मुड़ा को कहां करे,
0: जिस ठाकुर से ना हिंचारा,
1: ताको की जय सत नमस्कारा,
0: जाके मन लगा पर मीठा,
1: सर्व सूखता हूँ मन बूठा,
0: जिस दिन अपना हुक्म नाया,
1: सर्व थोक नानक दिन पाया,
0: गंत शाव अपनी देरा आसन,
1: खाद पीत बरते अनदुलास,
0: अपनी मान कस बहुर सहले,
1: ज्ञानी मन रोस करे,
0: अपनी परती दापी खोवे,
1: बहुर उसका विश्वास न होवे,
0: रब
1: की आज्ञा मन मत है,
0: उससे चौगन करे निहाल,
1: नानक साहिब सदा दयाल,
0: पार माया के
1: सर पर होवत जान नेत,
0: की छाया से रंग लावे,
1: गोविंद से मन पछतावे,
0: जिससे सो चालन हाल,
1: अंधार
0: ताको
1: हाथ न आवे के,
0: मन हर के नाम की प्रीत सुधाई,
1: कर कृपा नानक आप ले लाई,
0: मिथ्या तन तन कुटुम सवाया,
1: मिथ्या हम में ममता माया,
0: मिथ्या राज जवन तन माल,
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
0: मिथ्या सब वस्त्र,
1: मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता,
0: मिथ्या त्रो मोह विमान,
1: मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान,
0: अस्थिर भगत साध की शरण,
1: नानक जब जब जीवे हर के चरण, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरा,
0: मिथ्या नेत्र पे सर पर त्रेल पार,
1: मिथ्या रसना भोजन स्वाद,
0: मिथ्या तन पर विकार को तावे,
1: मिथ्या मिथ्या मन पर लोभ लुभावा,
0: मिथ्या तन्नी पर पुकारा,
1: मिथ्या बास लेत बिकारा,
0: बिन बुझे मिथ्या सब पहे,
1: सफल दे नानक हर हर नाम ले,
0: वृथ्वी साकत की आजा,
1: साच बिना कह होवत सूचा,
0: वृथा नाम बिना तन अंध,
1: मुख आवता कह दुर्गंध,
0: सिमरन दिन रहन वृथा भयाए,
1: मेघ बिना जो खेती जाए,
0: गोविंद भजन बिन बिस्ते सब काम,
1: जो कृपन के निरारत नाम,
0: तन तन तेजन जे घट बस्यो नाम।

0: अवर ना पेखा एक सुबिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमल लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष
1: जैसे सूर सर्व को शोक
0: ब्रह्म ज्ञानी का दृश्यमान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी का तीर एक
1: जो बसदा को खोदा को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ
1: नानक जो पावक का सह स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मल
1: जैसे मैन लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
1: जैसे तर ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्तर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अपमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा
1: मन अपना है सबते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे
1: नानक जिन प्रभ आप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सरल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर में
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी का जीवी स्वाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी उपकार महा
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत मंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी का हो सफला
1: ब्रह्म ज्ञानी सफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संसार उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अहम बहुत त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख साय निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी का होए चिंतन
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी निष्कर प्रभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइया
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानना भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथन जाय द्याखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मिट कौन बखान है
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानना
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुग जीता दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगला कार
1: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब

0: मिथ्या नहीं रसना परस
1: मन में प्रीत निरंजन दर्स
0: पर त्रै रूप न पेखा नित
1: साध की टहल संत संग हित
0: न सुने कहूं की निंदा
1: सत्य जाने आपस को मंदा
0: प्रसाद विख्या पर हरा
1: मन की वासना मन ते तर
0: इंद्रिय पंडो तर
1: नानक कोट में देखो ऐसा परस
0: वैष्णव
1: की माया ते होए पिन
0: करत होवे नहि करम
1: जिस वैष्णव का निर्मल धर्म
0: फल की इच्छा नहीं बाचे
1: केवल भगत कीर्तन संग्राचा
0: मंत्र
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: नाम जपावे
1: नानक को वैष्णव परम गत पावे
0: भक्ति भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्यागा दुष्ट का संग
0: मन ते विनसे सगला परम
1: कर पूजा सगल पार ब्रह्म
0: साथ संग पापा मल खोवे
1: जिस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत
1: मन तन अर्पे विष्णु प्रीत
0: हरके चरण हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सो पंडित जो मन पर बोध
1: राम नाम आत्म सुध
0: राम नाम सारस पीवे
1: उस पंडित के उपदेश जग जीव
0: हर की कथा हृदय बसावे
1: सो पंडित फिर जो न आवे
0: वेद प्राण सिमरत जय मूल
1: सुख में जाने स्थूल
0: क्यों वरना को दे उपदेश
1: नानक उस पंडित को सदा देश
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
1: जो वरना में जपे को नाम
0: जो जो जपे जिसकी अर्थ होए
1: सा संग पावे जन को ए
0: कर कृपा अंतर तारे
1: पास प्रेत मुक्त पात्र को तारे
0: सर्व रोग का उखर नाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण काम
0: आहु जो कितने पाइए धर्म
1: नानक तिस मिला जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसका मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तिस नदी आया
1: दास तो संतन पाए तिन पाया
0: सदा निकर निकर हर जान
1: सो दास दरगाह प्रवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: जिस दास को सब सो जी पर
0: सगल संगा तुम दास
1: ऐसी जुक्त नानक राम दास
0: सबकी आज्ञा तुम हितावे
1: जीवन मुक्त सो कहावे
0: ऐसा हर तैसा सोग
1: सदानंद नहीं वियोग
0: ऐसा स्वरण तैसी स्मृति
1: ऐसा अमृत ऐसी बिखाटी
0: ऐसा मान तैसा मान
1: ऐसा रंग तैसा राजा
0: नानक
1: ऊपर कही जीवन मुक्त
0: ब्रह्म के सगले ठाऊं
1: जित जित कर रखे तैसा तिन्नाऊं।

0: कर्ण क्रावन सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो
0: ज्योतिष भावै सोई फुन थियो
1: प्रभु ऊंच नीच में बसै
0: प्रभु सोग हर संग हसै
1: प्रभु निंद चिंद व्यवहार
0: प्रभु उपकाश प्याल
1: प्रभु बेटा ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: प्रभु नृत्य करे वो पांच
0: प्रभु सोए रहे दिन रात
1: प्रभु महाक्रोध विकराल
0: प्रभु सर्व की हो त्रिबाल
1: प्रभु होए भय वर राजा
0: प्रभु भिखारी नीच का साजा
1: प्रभु अब कीर्त में आवे
0: प्रभु भला भला कहावै
1: प्रभु रखै तू ही रहे
0: गुरु प्रसाद नानक सच कहै
1: प्रभु होए पंडित करे बख्यान
0: प्रभु पोर धारी लावे ध्यान
1: प्रभु तट तीर्थ स्नान
0: प्रभु से साधक मुख ज्ञान
1: प्रभु कीट हस पतंग होए जिया
0: अनक जोन पर मैं पर मिया
1: ਜੋ
0: ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਚਾਵੈ
1: ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਾਵੈ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ
1: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ
1: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗ
1: ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ
0: ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ
1: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ

0: सो नरक पाती होवत स्वान
1: जो जाने में जो बनवंत
0: सो होवत बिष्टा का जंत
1: आपस को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे बहु जोन प्रमावे
1: भूमिका जो करे गुमान
0: सो मूर्खंदा ज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे
1: धनवंता होए कर गरबावे
0: मान कर संग न जावे
1: लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: पल भीतरता का होए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: फिर मैं होए जाए पसमंत
1: विषय न बदे आप अहंकारी प्रसाद जाका मिटे मान
0: सो जन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हम तारे
0: पावे सगले बिरतारे
1: अनेक तपस्या करे अहंकार
0: सुर फिर अवतार
1: अनेक जतन कर आत्म नहीं देवे
0: दरगाह को कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे
0: किसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेंग जाका मन होए
0: कहो नानक ताकी निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कछ होए
0: तब इसको सुख नहीं कोई
1: जब जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन मैं फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचल नाही चीत
1: जब लग मोह मन संगवाए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: प्रभ कृपा रे बंधन टूटा
0: गुरु प्रसाद नानक हो छूटा
1: सांस खटे लग को उठावे
0: जत न आवे माया पाछा पावे
1: भोग भिक्षा के करे
0: न तृप्त आवे खप खप मरे
1: बिना संतोष नहीं को राजा

0: सत सत संतारी
1: आपे गुण आपे गुणकारी
0: शबद सत सत प्रभक्ता
1: सुरत सत सत जस सुनता
0: बुद्धन हार को सत सब होए
1: नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जिन मान्या
1: करन करावन तिन मूल पछाने
0: जत हृदय विश्वास प्रवाया
1: तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
0: ऐसे निरपो होए बसाना
1: जिसते उपजा तिस माए समाना
0: बस्त माहे ले बस्त गढ़ाई
1: ताको भिन्न न कहना जाई
0: बुद्धै बुद्धन हार विवेक
1: नारायण मिले नानक एक
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक का मन प्रतीत
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: ठाकुर को सेवक जाने संग
1: प्रभु का सेवक नाम कह रंग
0: सेवक को प्रभु पालन हारा
1: सेवक की राखा निरंकारा
0: सो सेवक जिस दया प्रभु तारा
1: नानक सो सेवक सास सास मारा
0: अपने धन का पर्दा ढक
1: अपने सेवक की सर पर रखा
0: अपने दास को देव ढाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आप
1: ताकि गत मित कोई न लाख है
0: प्रभु के सेवक को न पहुंचा
1: प्रभु के सेवक ऊंच ते ऊंचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दह दृश्य प्रगटाया
0: नीति कीरी मैं कर रखा
1: पसम करे लश्कर कोट लाख है
0: जिसका सास न काटत आप
1: ताको रख देकर हाथ
0: मानस जतन करत वो भांत
1: जिसके कर्तव्य व्यर्थे जात
0: मारे न रखे और न कोई
1: सर्व जिया का रखा सोए
0: काहे सोच करे रे प्राणी
1: जप नानक प्रभु अलख वडाणी
0: बार बार प्रभु जपिया
1: अमृत ए मन तंत्र
0: पिया नाम रतन जिन गुण मुख पाया
1: जिस किच अवर नाही दृष्टाया
0: नाम तन नाम रूप रंग
1: नामो सुखर नाम का संग
0: नाम रस जो जन तृप्ताने
1: मन तन नाम है नाम समा

0: रहे समाए,
1: जो हुआ हो सो जाना,
0: प्रभु अपने का हुक्म पहचाना,
1: किसकी महिमा कौन बखानो,
0: किसका गुण का एक न जानो,
1: आठ पैर प्रभु से हजूरे,
0: कहो नानक से ही जन पूरे,
1: मन मेरे तिनकी ओट ले,
0: मन तन अपना तिन जन दे,
1: जिन जन अपना प्रभु चाहता,
0: सो जन सर्व थोक का दाता,
1: किसकी शरण सर्व सुख पावे,
0: किसका दर सब पाप मिटावे,
1: सयान सगली छाड़।

0: हर दिन दूजा नाही कोई
1: सर्व निरंतर एको सोए
0: ओत रव्या रूप रंग
1: भय प्रकाश साध के संग
0: रच रचना अपनी कल तारी
1: अनपार नानक बलहारी
0: श्लोक साथ न चले बिन भजन।

0: चन कमरित में अवतार हो
1: समर्थ
0: कर गहो नाम हर वत
1: संचो वो भगवान
0: संत जना का निर्मल मंत्र
1: एक आस रखो मन माहे
0: सर्व रोग नानक मिट जाहे
1: जिस धन को चार कुंटल
0: सो तन हर सेवा ते पावे
1: जिस सुख को निर्वाचे मीत
0: सो सुख साधु संग प्रीत
1: जिस शोभा को करे भली करनी
0: सा शोभा पज हर की सरनी
1: अनुप पावी रोग न जाए
0: रोग मिटे हर अवखद लाए
1: सर्व निदान में हर नाम निदान
0: जप नानक दरगाह परवान
1: मन पर बोधो हर कह नाए
0: जद स्थावत आवे ठाए
1: ताको बिगन लागे कोए
0: जाके हृदय बसे हर सोए
1: ताती ठंडा हर नाम
0: सिमर सिमर सदा सुख पाऊं
1: औ बिनसे पूर्ण होए आस
0: भक्त पाया आत्म प्रगास
1: चित कर जाए बसे अविनाशी
0: कहो नानक काटी जम फांसी
1: तत विचार कहे जन साचा
0: जन्म रे सो काचो काचा
1: आवागमन मिटे प्रभु से
0: आप त्याग शरण गुरुदेव
1: रतन जन्म का होए उद्धार
0: हर हर सिमर प्राण आधार
1: पाव न छूटन हारे
0: सिमर शास्त्र वेद विचारे
1: भगत करो मन लाए
0: मन बंचन नानक फल पाए
1: संग न चालस तेरा तना
0: तू क्या लपटा है मूर्ख मना
1: तमीज कुटावर बनता
0: इनते कहो तुम कवन सुनाता
1: राय रंग माया विसार
0: इनते कहो कवन छुटकार
1: हस्ती राक्षस वारी
0: झूठा डंप झूठ पा सारी
1: जिस बुझे ना बिगाना
0: नाम बसार नानक पछताना
1: गुरु की मातृ ले याने
0: भक्त बिना बहुत डूबे सियाने
1: भगत करो मन मीत
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: रखो मन माहे
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहे
1: आप जपो नाम जपावो
0: सुनत कहत रहत गत पाव हो सहसपाय नानक गुण गाओ
1: गुण गावत तरी उत्तर
0: समय हो मैं बिख फैल
1: ओहे चिंत बसै सुखना
0: सास क्रास हर नाम समाल
1: चार सियान सगली मना
0: साथ संग पावे सच तना
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार
0: इहां सुख दरगाह जाकर
1: निरंतर एक को देख
0: कहो नानक जाके मस्तक लेख
1: एक को जप एक को सलाह है
0: एक सिमर एक को मन आहे
1: एक कसके गुण गाओ अनंत
0: मंतन जाप एक भगवंत
1: एक को एक एक हर आप
0: पूरन पूर रहे हो प्रव्याप
1: सार एक ते पाए
0: एक रात

0: जान जाते प्रदान
1: कर कृपा देवो हर नाम
0: साधना की मांगो तूर
1: आप हम मेरी श्रद्धा पूर
0: सदा सदा प्रभु के गुण गावो
1: सास सास प्रभु तुम्हें त्यागो
0: चरण कमल से लागे प्रीत
1: भक्त करो प्रभु की नित नीत
0: एक ओट एक आधार
1: नानक मांगे नाम प्रभु सार
0: प्रभु की दृष्टि महा सुख होए
1: हरस पावे बिरला कोई
0: बिन चाख्या से जान त्रिकाने
1: पूरन पुरख नहीं डोलाने
0: पर परे प्रेम रस रंग
1: उपजय चाओ साध के संग
0: शरण सब त्याग
1: अंत प्रकाश अंदन लिवलाग
0: भागी जपया प्रस होए
1: नानक नाम रतै सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी पई
1: सतगुर ते निर्मल मत लई
0: जन को प्रभु होयो दयाल
1: सेवक की नो सदा निहाल
0: बंधन काट मुगत जन पया
1: जन्म मरण दुख भ्रम गया
0: इच पुण्य श्रद्धा सब पूरी
1: रब रहा सत्संग हजूरी
0: इसका साथ इन लिया मिलाए
1: नानक भक्ति नाम समाये
0: सो क्यों विसरै जे काल न पाना
1: सो क्यों विसरै जे किया जाना
0: सो क्यों विसरै जे सब कुछ दिया
1: सो क्यों विसरै जे जीवन जिया
0: सो क्यों विसरै जे अगल में रखा
1: गुरु प्रसाद को बिरला लखा
0: सो क्यों विसरै जे विस्ते काढ़
1: जन्म जन्म का टूटा गांडा गुरु
0: पूरा तत एह बुझाया
1: प्रभ अपना नानक जन त्याया
0: साजन संत करो हे काम
1: आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो हर नाम जपावो
0: अगर पाए तरिया संसार
1: बिर भक्ति तन होसी छा
0: सर्व कल्याण सुख निर्नाम
1: बूढ़ जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का होस नाश
1: नानक नाम जपो गुणता
0: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ
1: मन तन अंतर एही स्वाओ
0: नेत्र पैर दर सुख होए
1: मन बिकसे सात चरण तोए
0: भगत जना का मंत्र रंग
1: बिरला को पावे संग
0: एक वर्ष दीजे करमया
1: गुर प्रसाद नाम जप लिया
0: ताकि उपमा कहीं न जाए
1: नानक रहया सर्व समाए
0: प्रभ बख्शन दीन दयाल
1: भगत वचल सदा कृपाल
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटा करत प्रतपाल
0: आज पुरस्कार करताल
1: भक्त जना के प्राण धार
0: जो जो जपै सोए पुनीत
1: भक्त पाए लावे मन ही
0: हम निर्गुण यार नीच अनजान
1: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
0: सर्व वैकुंठ मुगत मोह पाए
1: एक नमक हर के गुण गाए
0: आए भोग बड़े आई
1: हर के नाम की कथा मन पाई
0: वो भोजन का प्रसंगी
1: रसना जपती हर हर नी
0: भली सुकरनी शोभा तनवंत
1: हृदय बसे पूरन गुरमंत्र
0: सास संग

0: ऐश्वरी जब कार्य कचना दृष्टिता
1: पापन तब कहते होता
0: जब धारी अपन सुन समार
1: तब बैर विरोध के संग कुमार
0: जब इसका वरण चहन न जापत
1: तब हर्क सो को किसे व्यापत
0: जब अपन आपा पार ब्रह्म
1: तब मोह कहा किस होवत परम
0: अपन खेल आवर तीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्राप केवल तनी
1: तब बंद मुक्त को किसको गणी
0: जब एक कह हर गम अपार
1: तब नरक स्वर्ग कह कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्राप सह सवाए
1: तब शिव शक्त को कित ठाई
0: जब आपे आप अपनी जो तरह
1: तब कवन निडर कवन कत डरा
0: अपन चलता करने हार
1: नानक ठाकुर गम पार
0: अविनाशी सुख अपन आसन
1: तह जन्म मरण को कहा विनाशन
0: जब पूरन करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब
1: अवगत अगोचर
0: प्रविका
1: तब चित्रगुप्त किस पूछत लिखा
0: जब नाश निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे
0: अपन आप ये चर जा
1: नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा
0: जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता
1: तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तह कौन को मान कौन अपमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: तह छल सिद्ध लगत को कीस
0: जय जो स्वरूपी जो संग समावे
1: तह किसे भूखवन तृप्तावे
0: रावण करने हार
1: नानक करते का नाहि शुमार
0: अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई
0: जय सर्व कला पे परवीन
1: तब वेद के देव कहा को चीन
0: अपन आप आप उतारा
1: तो सगन अब सगन कहा बिचारा
0: अपन ऊंच अपन अब नेरा
1: तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा
0: विस्मय विषम रहे विस्मार
1: नानक अपनी गत जान हो आप
0: चल छेद भेद समाया
1: वहाँ किसे व्यापत माया
0: आपस को आपे आदेश
1: उनका ना ही प्रवेश
0: तै
1: कौन चिंत किस लागे चिंता
0: अपन आप आप तियारा
1: तै कौन कथे कौन सुनने हारा नानक आपस को आप पहुँचा
0: जय आप रचियो पर पंचकार
1: तै गुण मैं कीनो विस्तार
0: कहु
1: नर को स्वर्ग पंचावत
0: जाल माया जंजाल
1: मैं मोह परम पै पार।

0: बोली बुलाए
1: गुप्त अर्थ मंत्र पाओ जाए
0: सच व्यापार करो व्यापारी
1: दरगन बह के तुम्हारी
0: एक काट एक रखो मन माह
1: नानक भवर न अवे जाए
0: इससे दूर कहाँ को जाए
1: उबरा रखन हार त्याए
0: निर्भौ जपाए सगल भौ मिटाए
1: तब कृपा ते प्राणी छुटाए
0: जिस पर रखा तिस नाही दुख
1: नाम जपत मन हो सुख
0: चिंता जाए मिटे अहंकार
1: जन को कोई न पहुंचन हार
0: सिर पर ठाडा गुरसूरा
1: नानक ताके कारज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी देश
1: दर्शन देखत दृष्ट
0: चरण कमल जाके अनुप
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: अन्न सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामी पर प्रधान
0: जिस मन बसे सो निहाल
1: ताके निकट नावत काल
0: अमर भय अमरा पद